प्यासु। हर हर नाम मिले तृप्तासें, मिल संगत गुण परगाश। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर सुपाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश।

रैया मेरे माधो जी, सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाऊ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी धरिया, सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन भाव करे या।

नारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ध्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करें सोई तुद आपे सृष्ट सब पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा

जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैं जशनि उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिव कण को शिव गुण सोख दियो, शत्रण को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा तर तब देह पारा। जाबा करख कर तू कबू, तुम मैं मिलत देह तार सब हूं। जेते बदन सृष सब तारे, आप अपनी भूज उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद संभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाकू भेव ना पावत बेदा।

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती।

काल पुरख धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज आप जी की महान बख्शिश रहमत दे सदका पावन हजूरी विच शामा वेले दे दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आप जी की इलाही बाणी के कीर्तन सोदर की अरदास आप जी ने मेर करनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराई संगत दे हिरदिया ते वसाउणा संगत दियां तिल फुल पिटावां सिवावां दर ते प्रवान करनियां सभनां नूं चढ़दियां कला तंदुरुस्तियां बख्शणियां समूह परिवारां विच आपसी एकता इतफाक प्रेम भरोसे दियां दातां बख्श के निवाजणा देसां प्रदेशां विच आप अंग संग सहाई होणा सतगुरु जी इन्हां समयां नूं मुख रखदियां आप जी के हजूर समूह संगत वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है दरते प्रवान होवे करो कृपा अपने लाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिना मिलिया तिरनाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

सतगुरां जी ने महान महरामत बख्शिश की। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। सतगुरु जी कृपा करन तरस करके सानू अपने दर कर दी सेवा नाम बाणी दा प्यार।

चो सुनने लोचदा है गीत होंकिया चो कोला कोयला उड़ दिया पिंजरे बाबर कोयला उड़ दिया।

सुख कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा। सगल समगरी तुमरे सुतर तारी तुम ते होए सो, तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास।

ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਕੈ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੇ। ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਪਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨ ਮੇਟੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸੁਖ ਪਲ ਪਾਵੇਂ ਆਠ ਪੈਰ ਅਰਾਦੇ, ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਦੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ। ਚਿਤਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਤ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗਮੀਤ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰਸੇਵੀ ਐ। ਐਨ ਸਹਿ ਸਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਵ ਸੰਬੰਧੀ, ਨੋਰਿਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਈਦਨ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਮਾਟੀ ਕਹੋ ਜਲ ਦੈ ਦਿਸ ਤਿਆਗੈ। ਈਦਨ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਮਾਟੀ ਕਹੋ ਜਲ ਦੈ ਦਿਸ ਤਿਆਗੈ। ਉਪਰ ਚਰਨ ਤਲੇ ਆਕਾਸ, ਕਟ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਐਸਾ ਸਮਰਥ ਹਰ ਜਿਉ ਆਪ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਜੀ ਭਗਤਨ ਕੈ, ਆਠ ਪੈਰ ਮਨ ਤਾ ਕੋ ਜਾਪ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਖਨ ਪਾਸ਼ੇ ਦੂਦ ਮੈਲ ਕੀਨੂ ਸਾਬਨ ਸੂਦ, ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਡਰਤਾ ਫਿਰੈ
ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਿਰੈ, ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦੀਸੈ, ਸਗਲੇ ਸਾਜ ਕਰਤ ਜਗਦੀਸ਼ੈ, ਠੱਗਣਹਾਰ ਅਣਠੱਗਦਾ ਠੱਗੈ, ਬਿਨ ਵੱਖਰ ਫਿਰੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਪਾਗੈ, ਬਿਨ ਵੱਖਰ ਫਿਰੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਲਾਗੈ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਬਖਿਆਣ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਪਰਾਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਏ, ਜੰਤ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਬਖਿਆਣ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਈਦਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰ ਭਾਗੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਜਲ ਦੈ ਦਿਸ ਤਿਆਗੈ, ਉਪਰ ਚਰਨ ਤਲੇ ਆਕਾਸ, ਘਟ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਦੜਾਇੰਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਦੀ ਕੀਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਲੀਨਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਣ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਰਾਮ ਨਾ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਮਨ ਹੀਨਾ, ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਜਗਜੀਵ ਸੋ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦਾਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸੇ, ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ, ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ ਕਰ ਤਲੈ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ ਕਰ ਤਲੈ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਤ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਪਖੰਡਨ ਰਾਮ, ਸਗਲ ਜੀ ਸਰਨਾਵਤੀ ਪ੍ਰਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਉ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਭਾਰ, ਊਚ ਨੀ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲ ਸੰਸਾਰ, ਕੈਰ ਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕੋ ਕਾਹੇ ਕਰੀ, ਜੈ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆਉ ਮਾਂ ਦੀ ਜੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਜੈ ਕੁਲ ਸਾਧ ਬੈਸਨੋ ਹੋਏ, ਬਨ ਬਨ ਰੰਕਨੀ ਈਸਰ, ਬਿਮਲ ਬਾਜਨੀ ਜਗ ਸੋਈ ਰਹਾਉ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਸ ਸੂਦ ਅਰ ਖੱਤਰੀ, ਡੋਮ ਚਡਾਲ ਮਲੇਸ਼ ਮਨਸੋਏ, ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ, ਆਵਤਾਰ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਏ, ਧਨ ਸੋ ਗਾਉ ਧਨ ਸੋ ਠਾਓ, ਧਨ ਪਨੀਤ ਕਟੰਬ ਸੰਭਲੋਏ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸ ਤਜੇ ਆਨ ਰਸ ਹੋਏ, ਰਸ ਮਗਨ ਡਾਰੇ ਬੇਸੋ ਹੋਏ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸ ਤਜੇ ਆਮ ਰਸ ਹੋਏ, ਰਸ ਮਗਨ ਡਾਰੇ ਬੇਖੋਏ, ਪੰਡਤ ਸੂਰਸ਼ਦ ਪਰ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੈਸੇ ਪੁਰੈਨ ਪਾਤਰ ਜਲ ਸਮੀਪ, ਪਾਨਰਵਦਾ ਜਨਮੇ ਜਗ ਹੋਏ,
ਬਾਣੀ ਸੱਦੇ ਕੀ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲੇ ਕਿਉ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰਪਕੰਨਿਆ ਕੈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਿਆ ਪੇਖ ਤਾਰੀ ਕੁਮਾਰਤੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਕਦ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗ੍ਰਾਸੇ ਰਹਾਉ ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨ ਚਾਤਰਕ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ ਫੁਰ ਕਾਮਨ ਹਾਵੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਤਾ ਕੇ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਿਰਮਾਵੂ ਬੂਣ ਮੋਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੋ ਕਾਏ ਚੜਾਵੋ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹੋ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ ਆਓ ਸਿਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਕਿਉ ਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਪੁਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਆਕਾਰ ਮੂਰਤਾ ਜੁਨੀ ਸਭ ਅੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਚੌਂਪ ਦੇ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਨ ਚਿਤ ਆਸ ਰੱਖੇ ਹਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਨ ਅਨੇਕ ਚਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ਹਰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕੇ ਜੋ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ ਹਰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕਿਛ ਜੋ ਜੀ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ ਹਰ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਜੋ ਬਿਨ ਹਰ ਆਸ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਹਿ ਸਾਨੇ ਫਲ ਆਸ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ ਰਹਾਓ ਜੋ ਦੀਸੇ ਮਾਇਆ ਮੋਕ ਟੰਬ ਸਭ ਮਤ ਇਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਇਨਕੇ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਇਹ ਬਪੜੇ ਇਨਕਾ ਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਜੋ ਤੁਝ ਤਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਛਡਾਈ ਜੇ ਕਿਸ ਆਸ ਅਵਰ ਕਰੇ ਪਰ ਮਿੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਈ ਇਹ ਆਸ ਪਰ ਮਿੱਤਰੀ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਹੈ ਖਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬਿਨ ਸਭ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਕੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਾਲਿਆ ਸਭ ਥਾਏ ਪਾਈ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੈਤੀ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਆਸ ਕਰਾਵੇ ਤੈਸੀ ਕੋ ਆਸ ਕਰਾਈ ਕਿਸ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬਜਾਈ ਜਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਸ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ ਗੌਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਜੋ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਕਰੇ ਬਨਾਸਾ ਜੇ ਹਰ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨੇਫਲ ਸਭ ਅਕਾਲ ਗਵਾਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਾਸਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਉਪਰ ਕੀਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਜੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਹਾਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਅਵਰਾ ਪੈ ਤਾਂ ਆਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਥਾ ਬਹੁ ਬਹੁਤ ਘਟਾਸਾ ਆਪਣੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਪੈ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਦੁਖ ਤਤਕਾਲ ਕਟਾਸਾ ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਅਵਰੈ ਪੈ ਕਹੀਏ ਅਵਰੈ ਪੈ ਕਹਿ ਮਨ ਨਾ ਲਾਜ ਮਰਾਸਾ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦੀਸੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਮਿਲਾਸਾ ਜਿਤ ਦਿਨ ਉਨਕਾ ਸਵਾਓ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ ਤਿਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸੇਵ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੋ ਤੁਧ ਉਪਕਰੇ ਦੁਖ ਸੁਖਾਸਾ ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਉਹ ਸਿਰ ਰੱਖ ਨਾ ਸਿਖਾਸਾ ਹਰ ਜਪ ਮੰਤ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਲੈ ਜਾਪੋ ਤਿਨ ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਪੀਰ ਚਿਤਾਸਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਸੰਤੋ ਇਹ ਛੂਟਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਪਰਵਾਸਾ ਗੌਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ
सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। जैसे सख्त सूर बहु जलता गुरसस देखे लै जाए सब तपना। मेरे मन अमदन त्याय नाम हर जपना। जहां कहां तो राखे सब ठाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तो अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख हो लहो हर रतना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। तिनके चरण मलो हर दसना शब्द पछाण राम रस पावो। ओ उत्तम संत प्यो बड़ बढ़ना ते जन की वडियाई हर आप बधाई। ओ कटे ना किसे दी कटाई एक तेल तेलना। जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याय नित कर जुड़ना। जन नानक को हर दान एक दी जाय नित बसेर दे हरी मोह चरना। स्लो अगौंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह अमराव सिकदार चौधरी समिथया झूठ पाओ दूजा जान। हर अबनासी सदा थिर नेचल तिस मेरे मन पज परवान। मेरे मन नाम हरी पज सदा दे बाण। जो हर मैं पावे गुरु बहनी ते जेवड़ अवर नाही किसे कदा तान रहाओ। जितने तरवंत कलवंत मिलखवंत दिसे मन मेरे सब बिंस जाए। जो रंग कुसम कचाण हर सात निरंजन सदा से मन मेरे। जे तर तर गए पावे तो मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर ते आवे सो प्रदान। ज्यो चंदन निकट वसे हिरंड बपड़ा त्यों सात संग मिल पत परवान। वो सब ते ऊंचा सब ते सूचा जाके हिरद बसिरदे वसिया भगवान। जन नानक तिसके चरण पखाले जो हर जन नीच जात सेवकान। गौण महला चौथा। हर अंतर जामी सब ते वरत जे हार कराए ते हा को करिए। सो ऐसर सेव सदा मन मेरे जो तुदन सब तो रख लईए। मेरे मन हर जप हर नित पढ़ईए हर बिन को मर जीवाल न साके ता मेरे मन कायद खड़ईए रहो। हर पर पंच किया सब करते बिच आपे अपनी जोत तरई है। हरे को बोले हर एक बुलाए गुरपुरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले कौ तिस पासो मन क्या चुराई है। नेक कपट सेवा कीजे हर केरी ता मन मेरे सर्व सुख पई है। जिस दै वस सब किश सो सब दो वड्डा सो मेरे मन सदा त्याई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तो लेश दई है। गौण महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन हर प्रभ जाने। मेरे मन अंतर की प्रीर रहाओ। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो पाए सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पजाओ हर दर्शन शांत शरीर। राग गौंड महला पंजवा। चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब करता सब भोगता रहाओ सुनतो करता पेखत करता दृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलोक करता व्यापत करता अल्पत करता भगतो करता बूझद करता आवत करता जाद भी करता। निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक सम दृष्टा। गौण महला पंजवा।
फाक्यो मीन कपकी न्याई तू उजरे हो कंबाए ले पग तारे साह लेखे लय तो उदरे हर गुण गाए ले परस पग तारे सास लेखे लै तो उदरे हर गुण पाए ले मन समझ छोड़ अवाए ले अपने रैन कठोर न पावे काए पर कह जाए ले रहो जो मैगल इंद्री रस प्रेरियो तू लाग परियो गुण भाए ले जो पंखी अकत्र होए फिर बिछरे फिर संगत हर हर त्याए ले जैसे मीन रसन साध बिनस्यो ओ मूठो मूड़ लबाए ले तू होवा पंचवास वैरी कै छूटे पर सरनाए ले हो कृपाल दीन दोह पन सब तुमरे जी जताए ले पावो दान सदा दस पेखा मिल नानक दास दसाए ले राग गौण महला पंजवा चौब दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण की जनसाज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किस भोजन पगाए सो प्रावत मूड एक अत जाए पार मैं की लागो सेव गुरते सूजे दन देव रहाओ जिन की ये रंगन प्रकार ओपत पर लो निमख मजार जाकी गद में कहीं न जाए सो प्रभ मेरे सो प्रभ मन मेरे सदा ध्याए आवे न जाए आए न जावे ने चलतनी बेंत गुणा ताके के तगाने लाल नाम जाके परे पंडार सलगटा देवे आधार सतपुरु जाको है नाओ मिटे ओ कोड अगम मिटे कोड अग्नि में जगाओ बाल सिखाए भगतन को मीत प्राण दान नानक चीत गौण महला पंजवा नाम संकीनो बिहार नामो ही है मन का दार नामो ही चरकीनी ओट नाम जपत मिटे पाप कोट रास दी हरे को धाम मन का इष्ट गुसंग त्याग राव नाम हमारे जी की रास नाम नामो संगी जग का जात नामो ही मन लागा मीठा जल तल सामे नामो डीठा नामे दरगह मुख उजले नामे सगले कुल उदरे नाम हमारे कार सीध नाम संगे मनुआ गीर नामे ही हम निरपो पै नामे आवन जावन रे गुरपुरे मेले गुणतास कहो नानक सुज सुख सहज निवास गौण महला पंजवा निमाने को जो दे तो मान सगल भुखे को करता दान गर्भ कोर में राखण हार तिहटा कर कहो सदा नमस्कार ऐसो प्रभ मन मै ते आए काटिया कट जत कते सहाय रहाओ रंग राओ जाके एक समान कीट हस्त पुराण बियो पूछ न मसल तरे बियो पूछ न मसल तरे जो किस करे स्वापे करे जा कायम तन जान सकोए आपे आप नरिन सोए आप आकार आप निरंकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग पद लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अगाए नानक ते जन लागे पाए गौण महला पंजवा जाके संग ए मन निर्मल जाके संग हर सिमरन जाके संकल विखोह नास जाके संग हृदय प्रगा से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम का ये जाके नीत रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसै जाके उपदेश परम पौ नसे जाकी कीर्ति निर्मल सार जाकी रेन पासे संसार कोट पद जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम उदार सब्जियां का जाने प्यो कृपा दान देव पार ब्रह्म जपै निहा कृपाल ता पेटे गुरु साध दयाल दिन नानक नाम ते आए सूस है नंद हर नाए गौण महला पंजवा गुर की मूर्त मन में ध्यान
गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर के शब मंत्र मन मान, गुर के भजन हृदय ल तारो, गुर पार्वम सदा नमस्कार। मत को परम पुल संसार, गुर बिन कोय न उतरस पार हाओ। पुल को गुर मार्ग पाया, अवर त्यागर भक्ति लाया, जन मन की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेंत बढ़ाई। गुर प्रसाद उर्द कमल बिगाज, अंधकार में प्या प्रगाज। जिनकी आसो गुर ते जानया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मनया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी हो। कहो नानक प्रभ हे जनाही, बिन गुर मुक्त न पाइये पाई। गौण महला पंजवा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिठे दात। गुर परमेश्वर को जान, जोते पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रभता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देह निहाल, गुर के सेव की पूर्ण काल। गुर के सेव को दुख न ब्यापे, गुर का सेव दह दे जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार बंगुरिया समाए। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणी ताका मन लाग। गौण महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख भयो, सर्व पूजन गुर सेव। गुर बिना नहीं मैं थाओ, अंधे जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर दे त्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान। गुर के शरण रहो कर जोर, गुर बिना मैं नाही होर। गुर बो तारे बहुत पार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार मैं गुर मंत्र हो जा रहा, गुर के संग संग निस्तारा। गुर पूरा पाइये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी। गुर का शरण मेटे कोए, गुर नानक नानक हर सोए। गौण महला पंजवा। राम राम शंकर ब्योहार, राम राम राम प्राण आधार। राम राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सदैव संभाए। संजना मिल बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाओ। राम राम तन सच भंडार, राम राम राम कर आहार। राम राम विसरने जाए, कर कृपा गुरु दिया बताए। राम राम राम सदा सुहाए, राम राम राम लिव लाए। राम राम जब निर्म पै, जन्म जन्म कह कर वे गए। रमत राम जन्म निवार, उच राम पै पार उतार। सब ते उच राम प्रगास, निसबासर जप नानक दास। गौण महला पंजवा। उनको खसम की नी ठाक हारे, दास अंग ते मार बदारे। गोविंद पका मैल न पाया, राम जना मिल मंगल गाया। सगल से के पंचदार, राम पद के पानी हार रहाओ। जगत वादे लेते दान, गोविंद पर को करे सलाम। लूट ले सागत पद खोवे, साजना पर मन मल धोवे। पंच पूत जने कमाए, उत्पोज खेल कर जगत वे आए। तीन गुणा के संग रच रसै, इनको छोड़ो पर जन बस है। कर कृपा जन लिए शिडाए, जिसके से तन रखे हटाए। कहो नानक भगत प्रभ सार, बिन भक्ति सब हुए खुवार। गौण महला पंजवा। काल कलेश मिटे हरन आए, दो बिन से किन दुखी सुखी न उठाओ। जब जब अमृत नाम अगाए, संत प्रसाद सल फल पाए। राम जब जन पार पर, जन्म जन्म के पाप परे रहाओ।
गुर के जन देव रतारे अग्न सागते उतरे पारे जन्म जन्म मरण सब मिटियो पाद प्राप्त सुन लागे सह संवाद थान थान अंतर एको स्वामी सगल वटा का अंतर जामी कर कृपा जा को मत दे आठ पैर प्राप्त का नाम ले जा कह अंतर वसे प्रभ आप ताके हृदय होए प्रगास भगत पै हर कीर्तन करी है जप पार ब्रह्म नानक नस्तरी है गौण महला पंजवा गुर के चरण कम नमस्कार काम क्रोध तन थे मार हो रही है सगल की रींदा कट कर मैया सब मैं चींदा इद बेद रबो गोपाल गोबिंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ आड़ पैर के गुण गाओ जी प्राण का ये सुभाओ ताज बमान जान प्रभ संग साध प्रसाद से मन रंग जिंदो किया ते को जान आगे दरगह पावे मान मानता से निमल होए निहाल रसना नाम जपित गोपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु कहे मन मंगेर वाला हो दयाल देओ प्रवदान नानक जब जीवे प्रभ नाम गौण महला पंजवा तूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंधन करतार प्रभु के शरण गई सब त्याग गुर प्रसाद पै गुर सो प्रसन्न पै वडपाग प्रभु के शरण गई सब त्याग गुर सो प्रसन्न पै वडपाग आड़ पैर गाये गोबिंद तन तन प्रभु का प्रभु की जेंदर हाओ हर गुण रमत पै आनंद पार बम पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म दो मेट मलाए कर्म धर्म एतात ज्ञान सास जप ये हर नाम सागर तर बोत प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण राह लिए अपने कृपा थार पै दूत पागे बिगरार जुवे जमन कबुहार नानका किया करतार गौण महला पंजवा कर कृपा सुख नंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोविंद जी जम सले बख्शन तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार सदा निहार रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाई कड़का अंतर सर संभाई अपने दास का हल्द पल सवारे पद पाम प्रभ बिर तुम्बारे औखद कूट सिमर गोबिंद तंत मंत पजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बांशित पूर्ण फल पाए करन कारण समृत दियार सर्वदान महाबिचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गौण महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटे बलाए दुख तेरा सुला जाए हर गुण गावत रहिए संसार वड़पागी पाइये पुरख पार रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तेको पो न सके जमकाल जग में आया सो परवान गुरमुख अपना कर्म पहचान हर गुण गावे संत प्रसाद काम गुरु मिटे अनुबाद जदा हजूर जान जद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाड किए पंडार मिल सतगुरु सब काज सवार हर कै नाम रंग संग जागा हर जनी नानक मन लागा गौण महला पंजवा पाव सागर बोए थे हर चरण सिमर नाम ना ही फिर मरण हर गुण रमद ना ही जम पंथ मां बिचार भाई दूते मंत तौ सरनाई पूर्ण नाथ जंत अपने को दीजे हाथ रहाओ सिमरत शास्त्र वेद प्राण पार ब्रह्म का करे वख्याण जोगी जति बैठो रामदास मिल ना ही ब्रह्मदास कर्ण प्राव करे शिव देव तलनी पूजे अलख अपे प्रेम भगत जिस आपे दे जग में विरले के ही के मोह निर्गुण गुण की नाहे समदा ते दृष्टि माए
नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गौण महला पंजवा, संत कालिया तरत बदारो, संत गनिंद कास टारो, संत गुरा को जी अपने नाल, संत उदारण संत उदारो तदकम थार, सोई संजय पावे राम, संत गोविंद के एक एक काम रहो, संत के ऊपर दे प्रभात, संत के संग बसे दिन रात, सा सा संतो प्रतपाल, संत गदो की राय ते टाल, संत की निंदा करो न कोए, जो निंदा है तिसका पतन होए, तिसको राखे से जनहार, चख मारो सगल संसार, प्रभ अपने का प्या विश्वास, जियो पिण सब तिसकी रास, नानक उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सद जीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बलायण रहाओ, नारायण सब मायने वास, नारायण कट कट प्रगा, नारायण कहते नरक न जाए, नारायण सेव सगल फल पाए, नारायण मन माया आधार, नारायण बोध संसार, नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण जम दंत पाने डायण, नारायण सद सद बख्शिंद, नारायण कीनो सुख आनंद, नारायण पर कीनो प्रताप, नारायण संत को माई भाव, नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण, बस्ते गोचर गोल मल्लई, नारायण ओढ़ नान दास कही। गोड़ महला पंजवा, जाको राखे राखनवार, तिसका अंग करे निरंकार रहाओ, मात कर मैं अगना जो है, काम क्रोध लो मो न पोहै, सास जपे निरंकार, निंद के मोला गहिशार, राम कवच दास का सनाह, दोष दोष पोहत नाय, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास प्रभु शरण आए, जो जो शरण प्यार राय, सो दार क्या अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे हंकार, ओ खिर में रुलता खाकू नाल, है भी साचा हूं हार, सदा सदा जाए बलहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रपाण उदार। गौण महला पंजवा, अचरज कथा बहानूप, अचरज कथा महानूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ, नाए बूढ़ा नाए बाला, नाए सदूक नहीं जमजाला, नाए बिनसे नाए जाए, आज युगा दीर्या समाए, नाए उसन नहीं है सीत, नाए इस दुश्मन नाए इस मीत, नाए इस हरक नहीं इस सोग, साब किसी का ये करने जो, ना इस बाप नहीं इस माया, ये अपरंपर होता आया, पाप दोन पाप पुन का इस लेप न लागे, पाप पुन का इस लेप न लागे, काट काट अंदर सादी जागे, तीन गुणा एक सख्त पाया, महामाया ताकि है छाया, अशल अशेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकि गद मित किसु न पाए, नानक ताके बल मल जाए। गौण महला पंजवा, संतन के बलहारे जाओ, संत के संग्राम गुण गाओ, संत प्रसाद करवे सब गाए, संत शरण बिन पागी पाए, राम जबत किश बिन ना ब्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापे रहाओ, पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल, काम क्रोध इस तन ते जाए, राम रतन वसे मन आए, सफल जनता का प्रवाण, पार ब्रह्म निट कर जान, पाए पद प्राकी तन लाग गए, जन्म जन्म का सोया जाग गए, चरण कम जन का आधार, गुण गोविंद रहूं साच वपार, दास जन की मनसा पूर, नानक सो पावे जन तूर, रागौंड स्पदियां महला पंजवा, कर दूजा इक्यो ओंकार, सतगुर प्रसाद,
कर नमस्कार पूरे गुरुदेव सबल मूर्त सब जाकी सेव अंतर जामे पर बदाता आन पर आठ पैर नाम रंग राता अंतर जामे पुरख बदाता आठ पैर नाम रंग राता गुरु गोबिंद गुरु गोपाल अपने दास को राखन हार रहाओ पातशाह शाह अमराव पत्याय पातशाह शाह अमराव पत्याय दुष्ट अंगारे मार बचाए निंदे के मोके नो रोग जय जयकार करे सब लोग संतन के मन महानंद संत जबे गुरुदेव भगवान संगत के मुख उज्जल पै सगलता निंद कह गए सास जन सदा सलाहे पारम गुरबे परवाए सगल सगल पै मिट जाकि सरण निंदक मार पै सब तर जन की निंदा करे ना गोए जो करे सुधु गिया होए आड़ पर जन एक ते आए जम ताके निर्णय जाए जन नरवैर निंद अहंकारी जन पल बांध निंद विकारी गुर के सिख सतगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सात बज वरते हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ सर पर जाए ने तरिया सतगुरु तर तेरी कर कृपा राखो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलहारी जाके सिमरन पैज सवारी राह गौड़ बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिए कही है मिले संत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संत सो बोले उपकारी मूर सो बोले चखमारी बोलत बोल बड़े बकारा बिन बोले क्या करे बेचारा कहो कबीर शूशा कट बोले परया होए सो कबू न डोले गौण नरु मरे नर काम न आवे पशु मरे दस काज सवारे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू मैं क्या जानू बाबा रे रहाओ हार जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे कास का फूला कहो कबीर तब ही नर जागे जम का डंड मूंड में लागे गौंड आकाश गगन पताल गगन है चौदस गगन रहाए ले आनंद मूल सदा प्रखोतम कड़ बिन से गगन न जाए ले मोह बराग प्यो ये जियो आए कहां ग्यो रहाओ पंच तत् मिल काया कीने तत् कहां ते कीन रे करम बा तुम जियो कहत हो करमे केंजो जियो दे हर हर हर में तन है हर में तन है तन में हर है सर्व निरंतर सोए रे कह कबीर राम नाम न छोड़ो सहजे होए सो होए रे राग गौण बाणी कबीर जियो की कर दो जाए क्यों अंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डारियो हस्ती ग्रो मूड मैं मारियो हथ बागे चीसा मारे या मूर लगे हों बलहारे आए मेरे ठाकर तुमरा जोर काजी बको हस्ती तो रहाओ रे महाबत तुझ डारो काट तेसे त्राबो कालो साठ हस्त न तोरे तरे ध्यान वाके हृदय बसे भगवान क्या अपराध संत है कीना बाद पोट कुंजर को देना कुंजर पोट लैल नमस्कार बूझी निका जी अंधियारे तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजो ना पतीना कह कबीर हमरा गोबिंद चौथे बन में जन की जिंद गौंड ना ए मानस ना ए देव ना ए जरी घावे सेव ना ए जोगी ना उदूता ना इस मायन बाहू ना इस मायन काहू पोता यह मंदिर में कौन बसाई ताका अंत न को पाई रहो
ना है गृही ना उदासी, ना है राय न भीख मंगासी, ना इस पिंड नरक तुराती, नानक ना है ब्राह्मण ना है खाती, ना है तबा कहा वे सिख, ना है जीवे न मरता देख, इस मरते को जे को रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मन दो मिटवाया, खो कबीर हे राम की अंश, जस कागत पर मिटे न मंस, गौण टूटे ताग निकुटी पान, द्वार ऊपर चलका वे कान, कोज बेचारे फूए फार, ये मुड़िया सिर चल बोखार, ये मुड़िया सगलो दम खोई, आव जा नाग सर होई राव, तुरी नार ने की छोटी बाता, तुरी नार की छोटी बाता, राम ना वाका मन राता, लड़की लड़कन खै बोना, मुड़िया अंदर था फे जाए, एक दोहे मंदर एक दोहे बाट, हम को साबर उनको खाट, मूड पलोस कमर बात पोती, हमको चाबन उनको रोटी, मुड़िया मुड़िया हुए एक, ए मुड़िया बोर्डर की थे, सोन अंदली लोई बे पीर, इन मुड़िया ते पास शरण कबीर, गौण खसम मरे तो नार न रोवे, वो से रखवारा और होवे, खसम मरे तो नार न रोवे, वो से रखवारा और होवे, रखवारे का होए बनास, आगे नरक इहां भोग भला, एक सुहागण जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ, सुहागण गर सोहे हार, संत को बेबे से संसार, कार श्रृंगार बह पकियारी, संत की ठिकरी फिरे विचारी, संत पागो पाछे परे, गुर प्रसादी मारो डरे, साकत की ओ पिंड परायण, हम को दृष्ट परे त्रखडायण, हम तिसका बो जाने प्यो, जापे कृपाल मिले गुरुदेव, कहो कबीर अब बार परी, संसार के अंचल लरी, जा हुए कृपाल मेरे गुरुदेव, कहो कबीर अब बार परी, संसार के अंचल लरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सात सिंह जी, सतगुरु की रहमत है, अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार दे माक, अमृत वेले सज दिवान दी हाजरियों भरियां ने, नेत्रे मनसार जो बाणी दे पाठ रंभ ने, आप जी ने सगुण कीते ने, गुरु कृपा करे आप सब नू सतगुरु चढ़ दियां कला बख्शन, सिर ते मेहर भरिया हाथ रखन। सो कल नू तीन अखंड पाठ रंभ होने ने, जिन्हां दे भोग एतवार नू पैणगे, परिवारां नू बेनती दर्शन देने, और कल शाम नू 26 तरीक है वर्कशॉप आनंद कार्ज दे बारे, कि गुरमत अनुसार मर्यादा की है आनंद कार्ज दी, इहदे नाल विचार करन लई आप जी नू बेनती है कि 6:30 तों 8 बजे तक एक क्लास गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के वर्कशॉप लगेगी, आप सब नू बेनती है कि आप जी ने जरूर हाजरियां भरनियां। सो आओ सर्वन करिए आज सकी वार दे कीर्तन भाई दिलबाग सिंह दे जथे पासो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओए

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवार सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कचन कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा नहीं चल थाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझे

काया का काक सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सुख करे संसार चूरा जारा ते कुड़ियारा खराबा विकार एक हुंदा खाए चले ताऊ तिना पिकाई कार जल थल जिया पूरिया लोहा कारा कार ऊ जे आख सो तू है जाना तिना पितेरी साख नानक भगता पुख सलाण सच नामा।

पहला कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैचनार, कूड़ सोईना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूपा पार।

बुद्ध कहते निर्भो डरता फिर होंदी को अणहोंदी हिरे देही गोवत बदेही दिस सगले साज करत जगदीश ठगनहार अनठगदा ठग बिन वखर फिर उठो फिर उठ लाग संत सभा मिल करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण

0: संत सभा मिल करो बख्यान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार बिचारे कोए, नानक ताकी परम गत होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जीओ, सतगुरु दी अपार बख्श रहमत कृपा दा सिक्का मतले सज दीवान दी हासियां परियां ने, नेत्र अनुसार बाणी दे पाठ उपरंत आसा की वार दे कीर्तन सुन कीते ने, जस रस प्राप्त कीता उपरंत गुरु चरणा विच सरबत दे पलली पं दी चढ़दी गुलाब सरबत संगत दी चढ़दी कला लई अरदास बेनती होई है। सतगुरु ने पवित्र हुक्म नामे बख्शे जो आपां श्रद्धा नाल सरवण कीते ने, गुरु कृपा करे सतगुरु सतगुरु चढ़दियां कला बख्शन, बख्शिया उपदेश कीती हुई सेवा सतगुरु अपने दर ते प्रवान करन और बख्शिया उपदेश सिर दे विच दृढ़ हो सके, यह कामना करदे हां। सो बड़े प्रोग्राम सर इस मुखवाग की कथा विचार भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी आप सरवण कराउणगे। उस तो पहला बेनती कि कल नूं दो खंड पाठ आरंभ होणे ने, जिन्हां दे भोग ऐतवार नूं पैणगे, परिवार वल्लों बेनती दर्शन देने। कल नूं शाम नूं दस्तार सिखलाई दी भी जिहड़ी क्लास लगदी है 6 बजे, सो नाल नाल कल नूं आनंद कार्ज दियों मर्यादा अनुसार किवें नभाउणा, इहदी की मर्यादा, इहदी सिक्ख्या वास्ते वर्कशाप लग रही कल 6:30 to 8 बजे तक। सो गृहस्थी जीवन में प्रवेश होने वाले जिन्हें भी बच्चे ने, कोशिश करिए कि आप इन्हें जरूर अटेंड करिए। आओ सरवण करिए हुण कथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम

गुर रामदास राखो शरणाई, वाहिगुरु साहिब जीओ गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोग ध्यान चित लाया,

कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहेथ अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो ही सज्जे दवाना दियां हाजरियां भर रहे सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों सतगुरां ने बड़ी बख्शिश कीती है आप सब गुरदेव की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के जिंदगी दियां इन्हां घड़ियां श्वासां नूं सफलियां करन दा उद्यम साहिबां दी अमृतमई बाणी दे नाल कर रहे हो। मेरे तो पहला गुरु करके रागी सिंह आप जी नूं तुरकी बाणी के कीर्तन श्रवण

0: वाहेगुरु। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु,
1: वाहेगुरु, वाहेगुरु।
0: वाहेगुरु जी, वाहेगुरु।

तकरीबन सिख राज क्या सी कि 1721 दे विच कौम दे महान शहीद भाई मनी सिंह जी होना नू माता साहब कौर होना ने हरिमंदर साहब का हैड ग्रंथी थापिया सी। गुरु प्यारिओ उदों तो लैके 1721 तो लैके 1738 तक हुण आपां उहनां दी शहीद 17 साल बन गए 17 साल भाई सिंह जी दरबार साहब दे हैड ग्रंथी रहे और इन्ने समय दे विच उहनां सिक्खी का प्रचार प्रसार पूरी इमानदारी दे नाल कीता। साधु फकीर निर्मलिए उदासीए ज्यादा तौर पर वह आया करते सन क्योंकि सिंघां दा उत्थे

साध संगत निध हर को नामो संग सहाई जी कै काम रहाओ। संत रेन नित मजन करै जन्म जन्म के किल विखहरै। संत जना की उच्ची बानी सिमरो सिमरो तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरि गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ की सिमरत दुख जाय रहाओ। ईत उत कहाँ लुभा वह एक स्यो मन लाए महा पवित्र संत यसन मिल संग गोविंद ते आए। सगल त्याग सरन आयो नानक लिहो मलाए। कानड़ा महला पंजवा पेख पेख विकसाओ साजनो प्रभु अपना एकांत रहाओ।

रहाओ। बूढ़त संसार सागर उदरे, हर सिमर रतनागर, शीतला हर नाम तेरा, पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा। दीन दर्द निवार तारन, हर कृपा निद पत ते उधारन, कोट जन्म दुख करम पायो, सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो। कानड़ा मोहल्ला पंजवा। तन हो प्रीत चरण संग लागी, कोट जाप ताप सुख पाए, आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ। मोहे अनाथ दासन जन तेरा, अबर ओट सगली मोहन ते आगी, पोरम परम काटी प्रभ सिमरत, ज्ञान अंजन मिल सोभत जागी। तू अथाहो अत बड़ो स्वामी, कृपा सिंध पूर्ण रतनागी, नानक जाचक हर हर नाम मंगे, मस्तक आन तरियो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा। कुचिल कठोर कपट कामी, जो जाने त्यों तार स्वामी रहाओ। तू सम्राट

सोच संजम नाही इने बदे छुटकार। गरत कोर अंध ते काढ़ो प्रभ नानक नदर निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बहाओ। सुरसरी सलल कृत बारुनी रे संत जन करत नहीं पान। सुराप बितर नत अबर जल रे सुरसरी मिलत नह होए आन। तार तार अपवित्र करमानिया रे जैसे कागरा करत विचार। भगत भागवत लिखी आए ते उपर पूजिए कर नमस्कार।

हम अचित अचित न जन है गत मित गुर किए सुचित चिते न प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिले मन प्रीतम कट देवा ही राते न हर के संत मिले हर मिलिया हम किए पतत पवेन हर के जन उत्तम जग कही है जिन मिलिया पाथर सेन जन की महिमा वर्ण न सको ओए उत्तम हर हर के न

चौथा जप मन राम नाम जंगनाथ कुमन घेर परे बिखर बिखया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखया लोभ लुपते काष्ट लोह तरे संग साथ

राखो जन साथ। कानड़ा महला चौथा पड़ताल घर पंजवा इक ओहकार सतगुर प्रसाद। मन जप हो राम गोपाल हर रतन जवेहर लाल हर गुरमुख।

हर लियोरी सहाग हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत हो बल भले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण

तू जाने सब विद बूझे आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर काट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगाधो मत गुरमत हर प्रवलादो।

कीर्त प्रभु की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंधन संतन उहां चरण गोबिंद जी के बसना रहाओ। अनक भांत कर द्वार न पावाओ, होए कृपालता हर हर त्यावाओ। कोट कर्म कर दे न सुधा, साध संगत मह मन प्रभुदा। तृष्णा ना बुझी बहुरंग माया, नाम लैत सर्व सुख पाया।

टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गति राहु पूजा चरना ठाकर सरना सोई कुशल जो प्रभु जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जा कौ

कह काम रहाओ। संत रेन नित मजन करै, जन्म जन्म के किलबिख हरै। संत जना की उच्ची बाणी, सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानन महला पंजवा। साधु हर हरे गुण गाए, मान तन धन प्राण, प्रभ के सिमरत दुख जाय रहाओ। ईत ऊत कहाँ लुपावे, एक स्यों मन लाए। महापवित्र संत आसन मिल संग, गोविंद त्याए सगल त्याग, सरन आयो नानक मलाए। कानड़ा महला पंजवा। पेख

सिंध पूर नरतनागी नानक जाचक हर हर नाम मंगै मस्तक आन तरयो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठो

गहे रहे अटकाए, अनक पात की एक जाली ताकि गंठ नहीं शोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरण आए।

रहाउ। ज्ञान त्याग नामो ज्ञान नाम इशनाना कर नाम हमारे कार्य सवार है हर नाम शोभा नाम बढ़ाई भौजल बिकम नाम हर तार है अगम पदार्थ लाल मुला प्यो प्रताप गुर चरनार है कहो नानक प्रभ पय कृपाला मगन।

काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म हियो की खान। पतत पावन सरन आयो उधर नानक जाने कांदड़ा महला पंजवा। अवलोको राम को मकार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ। चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन

मास प्राव बाहा पकर जिस मार्ग पावा हो सो तुद जंत मिलास अवर उठ मैं कोए ना सूजै हार।

मुक्त जुगत भुगत पूर्ण परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत चर्च चर्च चरचरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिर फिरत फिरत तरत तरत चरचरी रहाओ अह अह अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बवरई जात जात जात जात सदा सदा सदा सदा काल हई मान मान मान त्याग मृत मृत निकट निकट सदा हई

जनक जनक बैठे संगासन, नौ मुनि तूर लै लावै गो, नानक कृपा कृपा कर ठाकर, मैं दासन दास करावै गो, नगानड़ा महला चौथा, मन गुरमत रस गुण गावै गो।

जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा, राग कल्याण महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सपंगुर प्रसाद, रामा राम रामा अंत न पाया, हम बारक प्रतपारे तुमरे, तू बड पुरुख पिता मेरा माया, रहाउ हर के नाम असंख्य अगम है, अगम अगम हर रया, गुणी ज्ञानी सुरत बौकिनी, एक तिल नहीं कीमत पाया, गोविंद गुण गोविंद सद गावै, गुण गोविंद अंत ना पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया था न पाया, उस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गावै हर रहया, तुम जलनिद हम मीने तुमरे, तेरा अंत न कतु पाया, जन कहो कृपा करो मसूदन, हर देव नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हस्या, हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुरमस्तक प्रभ लिखिया, रहा गुर के पग सिमर दिन रहनी, मन हर हर हर बसिया, हर हर हर कीर जग सारी, का चंदन जस कसिया, हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चलियो नरिंदक, पग नागन छोए चलिया, जान के तुम हर रखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखे आ, कहा पया दैत करी बखीली, सब चा कर कर चर परिया, जेते जी जंत प्रभ किए, सब काला मुख ग्रसिया, हर जन हर हर हर प्रभ रखे, जन नानक शरण पया, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जाप जाप जगन्नाथे, गुरु उपदेश नाम त्यायो, सब किलविख दुख लथे रहाओ, रसना एक जस गाए न सके, बहु कीजे बहु रसन थे, बार बार खिन पाल सब गवै, गुण कह न सके प्रभ तुम न थे, हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी, हम लोचा प्रभ दिखन थे, तुम बड दाते जी जीन के, तुम जानो हम बर थे, कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कह तनु कहो क्या हा दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्प अर्पो, कोई प्रभ मिल है हे प्रभ मिल थे, हर के नाम असंख बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुष कर कर बरन थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमर, जन नानक के प्रभ समरथ थे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जाप हर गुण अकथ सुन थई, धर्म अर्थ सब कामोख है, जन पीछे लग फिर थई रहा, सो हर हर नाम त्याव हर जन, जिस वड भाग मथई, जन नानक दरगह है, जहां दरगह प्रभ लेखा मंग, तै छुट्टा नाम त्याए थई, हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख अरद अंतर प्राप स्वामी, जन नानक हार भजन भज थई, जहंती अवसर आय बनत है, तह राख नाम साथई, जन

रहाउ सब सुरती मेल सुरत कमाई सब कीमत मेल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया तुध मेण सिद्धी कनैना पाईया करम मिलै ना ही ठाक रहाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू दे तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हार।